हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है।

एक कहानी सुनाए सर। सबर और ध्यान दोनों से सुनिएगा। इस बार सिर्फ मजा ही नहीं, ताज्जुब भी होगा।

अच्छे और बुरे में चुनना तो बड़ा आसान होता है सर, लेकिन ई कहानी में तो दोनों बुरे हैं।

मोर से थोड़ा अलग है। चाहे गाने दुनिया ने बहुत दिए हैं, इस गाने में तुमने औरता की तरिया तने बज्जी नहीं मिलेगी। ये खास मर्दों के लिए है।

अभी भी सामने मेरे। I'm still trying to figure you out। है अभी भी कोशिश के तेरे ख्यालों से लेकर मैं जिक्र में आऊं। तू अभी भी ख्वाब है मेरा, असलियत से दूर है लेकिन काबिलियत को देख हाँ मेरी। मैं लिख चुका कितना तेरे पे नशे बिन। अब दुनिया